के लोग मुसलमान थे, माँ बाप भाई बहन सब, उनकी वजह से बगैर किसी मेहनत मुशक्कत तकलीफ मुसीबत के ईमान जैसी दौलत हमको हासिल हो गई। अगर खुदा न खास्ता वो मेहरबानी न करता और किसी काफिर के घर पैदा कर देता तो फिर ईमान जैसी जरूरी चीज, सबसे बड़ी जिंदगी की जरूरत, उसको हासिल करने की तौफीक हमको होती न होती कोई गारंटी नहीं। आज करोड़ों इंसान, दुनिया की अक्सरियत अक्ल रखती है, बहुत समझदार हैं, बड़े इल्म रखते हैं, लेकिन ईमान और तौहीद उनकी समझ में नहीं आती। जानवरों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, दरख्तों को पूजते हैं, दरियाओं को पूजते हैं, खुदा जाने काहे काहे को, और ऐसी चीजें जो बिल्कुल बेकार है वैसे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उनके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया खाने बुतों के रख दो, नजर नियाज, और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मक्खी जैसा बिल्कुल बेताकत कमजोर जानवर उठा के उड़ जाए, तो वो अपने खाने को उस मक्खी से छीन नहीं सकते। अपने खाने की हिफाजत कर लें, उससे छीन लें, मक्खी को न ले जाने दें, इतनी ताकत भी उनमें नहीं है। तो जो इस कदर मजबूर महज है कि एक मक्खी से न छीन सके, वो तुम्हारी हाजत रवाई इंसानों की क्या करेंगे, न दुनिया में न आखिरत में कहीं काम आने वाले नहीं। और फर्जी तौर पर, झूठे तौर पर उनको सब कुछ मान लिया जाता है। पत्थरों में, पहाड़ों में, नजासत में, गंदगी में, पेशाब में, पखाने में, गोबर में, फला में पड़े हुई चीजें, पत्थर वत्थर सैकड़ों बरस से, उसी को लाए, उसे तोड़ फोड़ के गढ़मढ़ के बुत बनाए, और उसी नजासत में पड़ी हुई चीज को गड़बड़ कर सब कुछ समझने लगे, मानने लगे, उसको माबूद मान लें और उसके सामने इबादत कर, इससे ज्यादा हिमाकत अल्लाह ने अपने फजल करम से उन तमाम बर्बादियों से, हिमाकतों से, जिल्लतों से अपने फजल करम से नजात अता फरमाया, बचाया, और एक अल्लाह को मानने वाला बनाया जो सारे आलम का खालिक है, राजिक है, अहकमुल हाकिमीन है, जिसने पूरा आलम, ये चांद हमारे लिए, ये सूरज हमारे लिए, ये हवाएं हमारे लिए, ये समंदर, ये दरिया, ये पहाड़, सब चीजें पूरा आलम हमारे लिए बनाया है। ऐसा दाता, ऐसा देने वाला दूसरा ऐसा आलम में नहीं है। उसको हम मानते हैं, उसको खुदा मानते हैं, उसकी कुदरत और उसकी रहमत और कर्म के कायल हैं। ये अल्लाह का कर्म है, उसने हमें किसी मेहनत में डालकर यहां तक नहीं पहुंचाया।